मीडियम वेव 214.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का युवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की आठवारी तिथि यानी कि 8 मई सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kabi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh, held bilateral talks with his Vietnamese counterpart, Dr. Vu Hai Huan, in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries, including collaborations involving research institutions, innovation hubs and technology incubation platforms. Addressing the meeting, Dr. Singh said that the comprehensive strategic partnership between the two countries has gained new momentum over the last decade. He said that around 10 researchers from Vietnam have availed fellowships under the India-ASEAN Research and Training Fellowship Program. Foreign Secretary Vikram Misri took part in a trilateral meeting between India, France and United Arab Emirates in Abu Dhabi yesterday, along with Reem Hal Hashmi, Minister of State and Special Envoy for India, and Martin Bryans, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The Ministry of External Affairs said the three countries agreed to strengthen their partnership and work on a roadmap with clear timelines. During the visit, Mr. Misri also met Khaldun Al Mubarak, Managing Director and Chief Executive Officer, Mubadala Investment Company, to discuss investment cooperation. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, the two U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation known as Project Freedom before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible. Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. That's the end of this news bulletin.
2: मीडियम फ्रिक्वेंसी पर ये आकाशवाणी।

0: துரத்தி.
1: अभी यह भक्त संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रीवा है। सुबह के 6:35 हुए हैं। किसान भाई के लिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। आज का विषय है भंडार गृह में चूहा नियंत्रण।
2: किसान भाई, देखिए समय लगभग कुछ लोगों की कटाई हो गई है और गहाई हो गई है, पर गहाई के बाद जो हम लोग अपने अनाज के भंडारण करी थे वो का कैसन के सुरक्षित रखे, अपने भंडार गृह का चूहन से कैसन के बचावे, कीट व्याध के आक्रमण से कैसे बचावे, ये जानकारी के मुताबिक किया है कि जो चूहा हाँ वो लगभग प्रतिवर्ष 41,00,000,000 टन अनाज का नष्ट कर देता, और चूहा खड़ी फसल का नष्ट करा था, और जो भंडार गृह होते है अगर वह अच्छे से सुरक्षा न की जाए तो ज्यादा नुकसान पहुंचावा था। अचुआ अपने भोजन खाए से ज्यादा हजार गुना फसल का नष्ट करा था, जैसे कि अपना परिजन के जो भंडार गृह है कच्चे घरन में है तो वह जाए के छेद बना ले था और बोजिंग का काट के अनाज का एक एक फैला दे था और वो माँ मलबूत त्याग दे था, ऐसे अनाज पूरा खराब हो जाते है, बर्बाद हो जाते है। और बरसात के समय में चूहा अधिक नुकसान पहुंचावा था, कहे के बरसात के समय में चारों तरफ गीला हो जाता है तो चूहा सूखी जगह में जाए खातिर बिलका बना ले था। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बिलकन में पानी भर जाए से कच्चे घर में और कच्चे घर के भंडार गृह जो है तो थोड़ा सा ढह जाए की संभावना रहा थी, और अनाज में मिट्टी भूसा अन्य कचरा मिल जा करत है, और एक नुकसान यह होता की ऐसे जहरीले सर्पों के आवे की संभावना बनी रहा थी। चूहा चला कंकाल स्वभाव के होता, शंका यह की आहट अगर उनका महसूस भय तो वह वस्तु का खाक छोड़ देता, सूंघे के और भापे के इच्छा शक्ति बहुत तेज होती। चूहन का नष्ट करे खातिर कुछ उपाय ऐसा हा चूहा नासी बिल के प्रयोग करे चाहिए। एमा जिंक फास्फाइड एक जहरीला काले रंग के पदार्थ है जो के 2% सांद्रता के प्रयोग कई के और ओकर एक भाग लाई के 50% चारा में डाल के लकड़ी की सहायता से आपस में ओका मिलाए दे और एमा ताजा सरसों के तेल या अन्य तेज महक वाली चिपके वाली कौनो वस्तु जैसे के या पिछला गुड़ ताजा घी के महेर और एक ऊपर से ओमा मिलाए दे और ऊपर से लाई मुरमुरा या रोटी के प्रयोग करके चारा बना

2% सांद्रता के प्रयोग कई के और ओकर एक भाग लय के 50 भाग चारा में डाल के लकड़ी की सहायता से आपस में ओका मिलाए दे और इमा ताजा सरसों के तेल या अन्य तेज महक वाली चिपके वाली कौनो वस्तु जैसे के ये पिछला गुड़ ताजा घी के महेर और एक ऊपर से ओमा मिला दे और ऊपर से लाई मुरमुरा या रोटी के प्रयोग करके चारा बना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।

0: राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and Chief Ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discuss initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation.

0: पहुंचाए हम जन जन तक, सपनों को दे हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी

श्रोत अगला गीत सुनिए फिल्म ताल से, जिसमें आवाजें हैं अनुराग श्रीराम की, सुजाता मोहन की, सोनू निगम और ए आर रहमान की। संगीतकार है ए आर रहमान।

इसी के साथ संगीत प्रभा अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी रीवा है। कार्यक्रम आज सवेरे सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:30 और आज की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज सवेरे, और आज के अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, स्वागत है आपका भी।
1: नमस्कार एंड हेलो निखिल, वी वेलकम ऑल आवर लिसनर्स टू जॉइन इन फॉर अनदर ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ आज सवेरे। So friends, stay with us and enjoy the program. For starters, Nikhil, we have some news headlines for them.
0: बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
1: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई।
1: The Directorate General of Training, DGT, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will host a high-level industry consultation today at the National Skill Training Institute, Kanpur, Uttar Pradesh. The ministry said that the event marks a pivotal moment in India's pursuit of a globally competitive aerospace skills ecosystem. It will bring together more than 30 senior industry leaders, CEOs and policy experts under one roof to deliberate on the establishment of a national center of excellence.
0: इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ भी उठाएंगे।
1: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रांस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की है। यात्रा के दौरान श्री मिश्री ने निवेश सहयोग के बारे में संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी
1: In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 PM.
0: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन पर ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती के कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। और श्रोताओं, समय है अब प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो सुभद्रा, क्या समाचार है आपके पास?
1: यस, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोयंबटूर कैरिड आउट एन एनफोर्समेंट सर्च एंड सीजर रेड ऑपरेशन यस्टरडे एट पुदुकोटई बेस्ड ऑन एन इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ द BIS एक्ट। द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ BIS ऑफिशियल्स कंप्राइजिंग ए अरिवरगन जॉइंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिशियल्स। 654 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वर्थ अप्रोक्सिमेटली ₹92 lakhs which did not bear the hallmark unique identification 6-digit alphanumeric number were found and exhibited for sale. As gold jewelry must be hallmarked with HUID before being exhibited for sale, the items were seized.
0: दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल पुनर्निर्मित नेहरू प्लेस डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब डाकघरों में बैंकिंग, बचत योजनाएं, आधार सेवाएं, पासपोर्ट सेवाएं और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वा रोधी दवा का छिड़काव भी हो रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। लोगों से अपील की गई है खुले पानी के बर्तनों को ढककर रखें और टंकियों को अच्छे से बंद करें। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले शाम 7 बजे से IPL मुकाबले के चलते राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि पार्किंग के लिए माता सुंदरी, वेलोड्रोम रोड और राजघाट मार्ग का ही उपयोग करें। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा आज से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर NSD के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने बताया कि NSD द्वारा आयोजित इस समारोह के लिए रंग प्रेमियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से जीवन रक्षक नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों के पास से नकली वैक्सीन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटी सीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं भी बरामद की गई हैं।
1: And moving to Hyderabad now, the Hyderabad administration has announced a comprehensive safety measures for the outer ring road following a high-level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajjanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department, HMDA, NHAI, GHMC and other agencies. The ORR witnesses 2.80 lakh vehicles daily with an average of 5 to 6 accidents happening every day. The commissioner emphasized proactive prevention rather than reactive response, setting a target of 0 accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections, special counseling for traffic violators. Safety awareness messages will be sent to commuters' mobile phones upon entering the ORR. Moving to another news from Hyderabad, the Union Minister Kishan Reddy inspected arrangements for Prime Minister Narendra Modi's massive public meeting at Hyderabad's parade grounds scheduled for May 10th. Speaking to media after reviewing preparations, Reddy highlighted the central government's sustained commitment to Telangana's development. The minister noted that approximately 12 lakh crore rupees have been allocated for Telangana's development over the past 12 years. And over to you now, Nikhil, for the next one.
0: जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। परिणाम results.digilocker.gov.in, mahassseboard.in और ssc.mkcl.org पर उपलब्ध होंगे। लगभग 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नवनिर्मित अंधेरी रेलवे स्टेशन RS डाकघर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से 1932-33 में स्थापित अंधेरी RS डाकघर को जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर ग्राहक सुविधाओं और आधुनिक डिजिटल सेवाओं के साथ उन्नत किया गया है। यह नवीनीकरण इंडिया पोस्ट की परंपरा से प्रौद्योगिकी की तरफ जाने वाली यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: And I'm taking you all to Bengaluru now. Karnataka will organize an exclusive job fair for persons with disabilities in August 2026 at Kantirwa Stadium in Bengaluru. Skill Development and Medical Education Minister Dr. Sharana Prakash R. Patil announced this while launching the Adidwara app, an inclusive employment and skilling platform for persons with disabilities at Vikas Saudha. The platform will connect persons with disabilities to job opportunities, internships and skill development programs through AI-based job matching.

0: Karnataka has decided to establish sustainable data parks in Bengaluru, Mysuru and Mangaluru with a combined capacity of 1000 megawatts. That decision was taken at a meeting attended by Energy Minister K.J. George, Industries Minister M.B. Patil and IT Minister Priyank Kharge. A 500 megawatt data park will be set up near Hoskote in Bengaluru with solar power supply from Pavagada. Land has also been identified in Mangaluru while suitable land will be selected in Mysuru. The ministers directed officials to make necessary preparations and hold discussions with potential investors soon. We have one more from Bengaluru. The Greater Bengaluru Authority has accelerated stormwater drain works being undertaken under World Bank funding across the city ahead of the monsoon season. Chief Engineer S.V. Rajesh said works worth ₹2,000 crore are in progress to develop and strengthen stormwater drains, including conversion of Kachcha drains into RCC lined drains. World Bank representatives yesterday inspected the ongoing works at Silk Board Junction, Anjanapura, Gandhinagar and Madiwala Lake.
1: और बात करते पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। तो ये थे महानगरों से जुड़े हुए अब तक के प्रमुख समाचार। और सुभद्रा, हम लेते हैं मौसम का हाल। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस तक के रहने के आसार हैं। कोलकाता की बात करें तो वहां आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा रहेगा सुभद्रा?
0: हाँ यस निखिल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 40 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है। आज 8 मई है और प्रमुख घटनाएं किस प्रकार, इस पर हम बात करते हैं सुभद्रा।
0: यस, एंड टुडे निखिल, बिफोर वी गो टू द हिस्ट्री सेक्शन, वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड सेल्फलेस सर्विस। दिस ओकेजन कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनंट, हुज विजन लेड द फाउंडेशन फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स। अक्रॉस द ग्लोब, रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट वॉलंटियर्स कंटिन्यू टू सर्व पीपल इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, conflict and need, bringing hope where it is needed most. This year's theme is United in Humanity, reminds us that together, through compassion and solidarity, we can build a more caring and resilient world.
1: और शुद्ध आपको बता दें कि ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक रक्त बीमारी के प्रति जागरूक करना और रोगियों के प्रति सहयोग तथा संवेदनशीलता को बढ़ाना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है और इस रोग की वजह से रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान या फिर कई अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता रैलियां, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
0: एंड Let's get to some history now, Nikhil.
1: Ji.
0: In 1360, the Treaty of Brittany was signed between England and France. And in 1886, American pharmacist John S. Pemberton developed Coca-Cola, a drink he originally billed as a cure-all tonic.
1: और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1541 में आज के दिन ही हर्नांडो डी सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की थी और वे ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ताओं में से एक थे.
0: And in 1624, the Treaty of Vienna was signed between Roman Emperor Ferdinand II and King Bethlen Gabor. And in 1945, Nazi Germany surrendered to the Allied forces, bringing an end to World War II in Europe. And 1962, the era of trolley bus in London ended. These buses were replaced by diesel-fueled buses.
1: वर्ष 1962 में आज के दिन ही रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी और इससे पहले वर्ष 1933 में आज के दिन ही महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन का उपवास शुरू किया था.
0: एंड वन मोर इम्पोर्टेंट आइटम, दिस इज इन 1980 इट हैपेंड, द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ द डेडली डिजीज ऑफ स्मॉलपॉक्स एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. द ग्लोबल इरैडिकेशन ऑफ स्मॉलपॉक्स इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट अचीवमेंट इन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. ऑफ कोर्स
1: श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2002 में कराची में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करके स्वदेश वापसी की थी और वर्ष 2004 में आज के दिन ही श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट हासिल करके सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था. और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वासुदेव चापेकर की. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के छोटे भाई थे जिन्हें सामूहिक रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है. उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया. चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध किया और आपको बता दें कि 1897 में पुणे में प्लेग फैलने के दौरान ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार से क्रोधित होकर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड को मार दिया था. वासुदेव चापेकर ने भी अपने भाइयों का पूरा सहयोग किया और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी.
0: एंड टुडे वी रिमेंबर जॉन स्टुअर्ट मिल, इंग्लिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ही वाज प्रोमिनेंट एज अ पब्लिसिस्ट एंड अ रिफॉर्मिंग एज ऑफ द 19th सेंचुरी एंड रिमेन्स ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट एज अ लॉजिशियन एंड एन एथिकल थ्योरिस्ट. ही पास्ड अवे दिस डे इन 1873. And friends, today is the death anniversary of Ustad Zia Fariduddin Dagar, a titan of the Hindustani classical tradition of Dhrupad, whose mastery of his art won him an army of fans all over the world. Dhrupad Sansa was started under the cell for human values to create an appreciation about Indian classical arts and culture among staff and students of the institution. And Nikhil, this is so beautiful what he said. Ustad Dagar says, Swar and Ishwar are the same. When you know one and you know the other, there is no religion to divide humanity. We are one and the music is one. And just let's listen to excerpts from one of his interviews.
2: Sir, Sangeet is a very big thing. There are three things in the world that people can see it. The Ishwar name is the thing that never lives and never dies. No one has seen it. No one has seen it. No one has seen it. They can only महसूस करते हैं. स्वर और ईश्वर में कोई अंतर नहीं. जिसने स्वरों को समझ लिया वो ईश्वर को भी समझ लेगा, जिसने ईश्वर को समझ लिया वो स्वरों को समझ लेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो. आप मानव समझ के आप अपना कार्य कीजिए. मैं मानव हूँ, मेरा कर्तव्य क्या बस.
1: आपको बता दें कि जिया फरीदुद्दीन डागर को ध्रुपद परंपरा का एक प्रमुख कलाकार माना जाता है और वे ऐसे घराने से संबंधित रहे जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपराओं को जीवंत करके रखा हुआ है. और आपको बता दें कि 19 पीढ़ियों तक लगातार ध्रुपद गायकी को इस परिवार ने बढ़ाया है. आइए सुनते हैं उनकी गायकी का ये

0: And of course, he was awarded the 1994 Sangeet Natak Academy Award, followed by the Padma Shri Award in 2012.
1: और श्रोताओं आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है भाई बाल मुकुंद की। वे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी थे। देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आपको बता दें कि भाई बाल मुकुंद का नाम विशेष रूप से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है। 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में उन्हें सहभागी माना गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई और आज के दिन 1915 में उन्हें फांसी दी गई थी।
0: And American singer, actor, one of rock music's first teen idols, Ricky Nelson was born this day in 1940, who recorded his first song in 1957. Nelson created boisterous rockabilly-flavored rock and roll, as well as some gentler ballads. Here's a beautiful song, Traveling Man.

0: श्रोताओं को बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है मास्टर अमीर चंद की। वे स्वाधीनता सेनानी थे और लाला हरदयाल के संपर्क से क्रांतिकारी आंदोलन में आए और फिर रास बिहारी बोस के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। अमीर चंद के मन में देशभक्ति की मान्यता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के बाजार में अपना स्वदेशी स्टोर खोला था और वहां देशभक्तों की तस्वीरें तथा क्रांतिकारी साहित्य बेचा करते थे। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्यों का संयोजन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में किया, जिसकी वजह से उन पर एक षड्यंत्र का केस चला और अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर उन्हें 8 मई को फांसी की सजा दी थी। और आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे और साथ ही एक जाने माने मार्क्सवादी दार्शनिक भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन में भौतिकवादी संस्कृति की गवेषणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो भारत और दुनिया के लोग, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, प्रकृति पदार्थ और परमाणु तथा आधुनिक विश्व का इतिहास जैसी पुस्तकें हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं।
1: And friends, 1926, May 8, happy 100 years to Sir David Attenborough, who has mastered the craft of storytelling. Natural historian, broadcaster and author from Leicester, England, has undoubtedly inspired generations of people around the globe to love and care for the natural world. And in doing so, Attenborough became one of the most recognizable and most trusted faces of our screens. Known for his distinctive voice in pioneering nature documentaries, including Life on Earth, Planet Earth and Blue Planet, that's a lifetime of wildlife filmmaking. He has educated millions on the natural world and become a leading voice for environmental conservation. American blues singer, guitarist, composer Joe Bonamassa celebrates his birthday today. He's played with legends, studied the greats and carved out a legacy of his own. A blues tune right here, right now for Joe Bonamassa.

श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देश पांडे की। वे मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और समाज शिक्षा विशेषज्ञ विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि के प्रसिद्ध कविता संग्रह की हम बात करते हैं तो फलवाद, भग्नभूर्ति, पीरतवा, सांगाती, दशपदी जैसी रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि 1977 में दशपदी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही जयंती है स्वामी चिन्मयानंद

0: की वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। और आपको बता दें कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने कई सारे कार्यों की शुरुआत की और शुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना भी की थी।
1: एंड बर्थडे ग्रीटिंग्स टू कीथ जैरेट, अमेरिकन जैज एंड क्लासिकल पियानिस्ट, कंपोजर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, अ चाइल्ड प्रोडिजी। जैरेट बिगन स्टडिंग द पियानो एट एज 3, performed his first solo recital at 7. He worked as a professional musician while in elementary school, also learning to play drums, vibraphone, soprano, saxophone, trumpet, and did not forget the electric guitar too. So fans continue to love those soaring melodies, and you are listening to one already in the background. It's called My Song.

और श्रोतों, आज जयंती है गिरिजा देवी की, जो कि भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, जो बनारस घराने से संबंधित रही हैं। उनकी कजरी बरसन लगी बहुत प्रसिद्ध हुई थी।

0: Girija Devi was awarded the Padma Shri in 1972, Padma Bhushan in 1989 and Padma Vibhushan in 2016.
1: और श्रोताओं को बता दें कि आज ही जयंती है तपन राय चौधरी की, जो कि जाने माने इतिहासकार थे। और तपन राय चौधरी ब्रिटिश भारतीय विशेषज्ञ, इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल के इतिहास के विशेषज्ञ थे। 1993 में ऑक्सफोर्ड से सेवानिवृत्त हुए और 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: एंड एलेक्स वैन हेलन, ड्रमर को फाउंडर ऑफ रॉक बैंड वैन हेलन, सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। आल्सो राइट आर्म फास्ट बॉलर, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड कैप्टन पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे।
1: और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो कि भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार है, जिन्हें खासकर हमारे देश में इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है।

आपको बता दें कि रेमो ने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करके एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 1980 से 1990 के दशक में अपने ऊर्जावान और अनोखे गीतों से काफी लोकप्रियता हासिल की थी। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया एक और गीत।

0: और श्रोताओं, समय हो रहा है आप सभी से अनुमति लेने का, तो फिर एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे ही संपन्न करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए

0: ये नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain.

मीडियम फ्रिक्वेंसी पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं तारे जमीन पर फिल्म के गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है अनंत माधवन ने। गीत लिखा है प्रसून जोशी, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म देवडी का नगमा, जिसमें आवाज़ दी श्रुति पाठक ने। आइए आप सुने माय नेम इज़ खान का एक गीत, जिसमें आवाज़ें अदनान शामी, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल और साथियों की। संगीतकार हैं शंकर एहसान लोहे और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म जाने तू ये जाने ना से, आवाजें हैं वसुंधरा दास और राशिद अली की। गीत लिखा अब्बास टायर वाला, संगीतकार हैं AR रहमान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए अब सुने फिल्म रॉक स्टार का ये नगमा, जिसमें आवाजें हैं मोहित चौहान, एआर रहमान और साथियों की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं इरशाद कामिल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए अब सुने फिल्म भाग मिल्खा भाग का एक गीत जिसे आवाज दी है शेयर घोषाल आशीष खान ने। संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए अब सुने जोधा अकबर फिल्म का ये नगमा, जिसमें आवाजें हैं जावेद अली और मधुश्री की। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं AR रहमान।

लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

मीडियम फ्रिक्वेंसी पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आकाशवाणी संग्रहालय से सुनिए नाटक दुल्हन, जिसके लेखक हैं एंटन चेखव, प्रस्तुत करता है विजय लक्ष्मी।

0: साशा आओ।
1: हाँ नादिया, रात के 10 बज रहे हैं, खाना लग गया है और तुम यहाँ बगीचे में अकेली खड़ी हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ?
0: कुछ नहीं साशा।
1: तो भी कुछ तो कर ही रही हो, बताओ मुझे।
0: मैं सोच रही हूँ साशा।
1: क्या?
0: यही कि मैं यहाँ जो वैभवपूर्ण जीवन जी रही हूँ, इसमें कोई बदलाव आएगा भी या नहीं? या मेरा जीवन भी दादी और मम्मी की तरह एक बंधी हुई लीक पर चलता जाएगा?

0: ये तो तुम पर निर्भर करता है नादिया।
1: कैसे?
0: देखो नादिया, यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वो निश्चय ही प्रचलित लीक को तोड़कर अपने लिए नया रास्ता बना सकता है। अरे, इस तरह सोचते रहने से तो रास्ता नहीं मिल सकता ना।
1: हाँ।
0: लेकिन नादिया, इस समय तुम ये सब क्यों सोच रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही आंद्रे से तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम उसे पसंद भी करती हो।
1: हाँ।
0: है ना? तुम्हारी शादी की तारीख भी तय हो गई है, 7 जुलाई। अरे, तुम्हें तो आज खुशी से साथ में आसमान पर होना चाहिए।
1: तुम शायद ठीक कह रहे हो साशा, लेकिन न जाने क्यों मुझे सब में कोई खुशी नहीं महसूस हो रही है।
0: लेकिन क्यों नादिया?
1: मुझे लगता है साशा, ये सब जो हो रहा है ये बिना किसी परिवर्तन के अनंत काल तक ऐसा ही होता रहेगा। क्या इससे किसी को ऊब नहीं होगी?
0: नादिया, तुम 23 साल की हो गई हो, लेकिन तुम बातें अभी भी वैसे ही कर रही हो जैसे जैसे आज से 10 साल पहले किया करती थी।
1: साशा, तुम बीमार हो और अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तुम्हें इस वक्त रात को बगीचे में नहीं आना चाहिए था, यहाँ ठंड है। चलो।
0: जानता हूँ नादिया कि यहाँ ठंड है, मुझे ठंड में नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम खाने के टेबल पर नहीं दिखी तो इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। और वैसे भी मैं पूरी तरह से ठीक कब था नादिया? मैं तो बचपन से ही बीमार हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हर गर्मी में मैं तुम्हारी दादी के यहाँ अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आता हूँ।
1: यहाँ अपना स्वास्थ्य सुधारने आती हो तो स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश भी तो करो। देर रात तक जागने और इस तरह ठंड में रहने से स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ।
1: खाने का कमरा गर्म होगा, हम लोगों का इंतजार भी हो रहा होगा।
0: अरे हाँ, चलो। तुम ठीक कह रही हो, चलता हूँ।
1: संभाल के ठीक हो ना?
0: ठीक।
1: देखो साशा, तुम्हें अगस्त और सितंबर तक यहाँ ठहरना चाहिए। मॉस्को लौटने की जल्दी नहीं करनी चाहिए।
0: लगता है यह सितंबर तक ठहरना ही ठीक होगा।
1: तुम यहाँ भी तो पेंटिंग्स बना सकते हो साशा। देखो ना, चारों तरफ कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। क्या तुम इसे अपने कैनवस पर नहीं उतार सकते?
0: उतार तो सकता हूँ नादिया, लेकिन वो पेंटिंग बेजान होगी, निर्जीव। उसमें सिर्फ सुंदरता होगी, जिंदगी नहीं। अरे, तुम उधर क्या देख रही हो?
1: मैं शीशे के उस पार मम्मी को खाने की मेज पर देख रही हूँ। देखो।
0: हाँ, मैं भी देख रहा हूँ।
1: देखो ना साशा, मम्मी इस समय कितनी सुंदर, स्वस्थ और प्यारी लग रही है।
0: हाँ।
1: उनमें कई कमजोरियां हैं, फिर भी वो अपने ढंग की अनूठी स्त्री है, नेक और दयालु।
0: हाँ, वो इस उम्र में भी सुंदर है।
1: हाँ।
0: बहुत भावुक है, लेकिन संवेदनशील नहीं।
1: क्या?
0: दयालु तो बिल्कुल भी नहीं।
1: क्या मम्मी संवेदनशील नहीं है? साशा, मम्मी अपने समय की बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। जो मंच पर अभिनय करता है वो दूसरे पात्रों की भावना और उनके दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता है।
0: हाँ, समझता है, लेकिन सिर्फ मंच पर, जीवन में नहीं।
1: क्या मम्मी दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझती?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन नादिया, मैं सच कह रहा हूं।
1: साशा,
0: देखो, सुबह मैं रसोई में गया, वहां मैंने तुम्हारे चारों नौकरों को ठंडे फर्श पर बिना बिना बिस्तर के सोते हुए देखा। फर्श पर तिलचट्टे और खटमल घूम रहे थे, लेकिन तुम्हारी संवेदनशील और दयालु मम्मी जो नाटकों में अभिनय करती हैं, अरे उन्हें तो अपने नौकरों की तकलीफ को समझना चाहिए ना। वैसे नादिया, मुझे यहाँ हर चीज अजीब लगती है, हर चीज। यह नौकरों के अलावा कोई काम ही नहीं करता, तुम्हारी मम्मी, दादी और नाई तुम्हारा वो

0: वो मंगेतर आंद्रे वो भी कुछ नहीं करता, बस कभी कभी संगीत कार्यक्रमों में वायलिन बजाता है।
1: अच्छे साशा, मैं तुम्हारी ये बातें कई बार सुन चुकी हूँ, क्या तुम कोई और नई बात नहीं कर सकते? अभी तुम मेरे आंद्रे के बारे में तुम कुछ कह रहे थे ना, तुम उसे कितना जानते हो?
0: मेरा आंद्रे?
1: हाँ।
0: नहीं नादिया, मुझे तुम्हारे आंद्रे की नहीं, तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे भविष्य की चिंता है।
1: सबकी चिंता करोगे हा? मगर अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करोगे? अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करो साशा। देखो अब बातें बंद करो और

0: साशा, अरे तुम और लो ना बेटा, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, तभी तो तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। देखो तो क्या शक्ल बना रखी है तुमने।
1: धन्यवाद दादी, लेकिन जितनी भूख होगी उतना ही तो खाना लूंगा ना। यकीन मानिए, मैं भूखा नहीं रहूंगा।
0: हाँ हाँ, तुम्हारा यकीन करती हूँ, पर खाना खत्म हो जाने के बाद जब तुम्हारी प्लेट देखती हूँ ना बेटा, तो यही लगता है इस प्लेट में खाना परसा ही नहीं गया। प्लेट बिल्कुल कोरी लगती है।
1: वो हमारे आने से पहले यहाँ कोई दिलचस्प बहस चल रही थी।
0: हाँ साशा, बेहद दिलचस्प। हम लोग सम्मोहन विद्या के बारे में बात कर रहे थे बेटा। मैं नादिया की मम्मी से पूछ रही थी कि क्या उन्हें सम्मोहन विद्या पर विश्वास है।
2: मैं इस पर विश्वास करती हूँ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि प्रकृति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं और जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते।
0: मैं सहमत हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी धार्मिक आस्था के कारण हम इन रहस्यों को रहस्य ही रहने देते हैं।
1: इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ते, अपने इस आरामदेह जीवन में प्रसन्न रहते हैं। जब तक हमारे अंदर नई बातों को, नए रहस्य को, एक बिल्कुल ही बदले हुए सुंदर और सभ्य जीवन को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, हम प्रकृति के रहस्यों को रहस्य ही रहने देंगे। हम अगर पढ़ेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तभी जीवन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से जी सकेंगे।
0: अरे तुमने तो इस दिलचस्प बहस को अपनी गंभीर बातों से नीरस बना दिया साशा।
2: अच्छा तो चलो संगीत का सहारा लेते हैं। अब बेटा आंद्रे, जरा अपना वायलिन उठाओ और कोई मीठा सा संगीत बजाओ।
3: अभी लीजिए।

0: अरे
1: ओह
0: तार टूटने का दुख मत करो आंद्रेई, ये तो प्रकृति की तरफ से एक रहस्य भरा संकेत है कि आज रात की ये सभा यहीं समाप्त कर दी जाए।
2: हाँ यही ठीक होगा, वैसे रात भी काफी हो गई है। ये मीठी धुन सुनने के बाद बहुत मीठी नींद आएगी। शुभ रात्रि।
3: शुभ रात्रि।

एक तो नींद देर से आई, ऊपर से चौकीदार की ठक ठक ठक ठक। टाइम क्या हो गया? 3 बजने वाले हैं। अब क्या किया जाए? ओ गॉड, मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है?

ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई भारी बोझ रखा हो। क्या शादी से पहले सभी लड़कियां ऐसा ही महसूस करती हैं? किसे मालूम। कहीं ये भाई साशा की बातों का असर तो नहीं है? लेकिन साशा तो कई बरस से यही सब कह रहा है, खूब पढ़ो ताकि तुम्हारी सोई हुई आत्मा जाग जाए। तो फिर आज रात ही उसकी बातों का दिमाग पर असर क्यों? ऐसे साशा जो कुछ कहता है उसमें सच्चाई तो है। सिर चकराने लगा है।

0: नादिया, नादिया तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं?
1: मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुन रही हूँ।
0: नादिया, नादिया मुझे बार बार वही बात कहने के लिए माफ कर देना। मैं फिर कहूंगा, तुम मॉस्को चली जाओ और पढ़ो, खूब पढ़ो। देश को पढ़े लिखे और ज्ञानी लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसे ही लोग अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। देश में जितने ज्यादा शिक्षित और जागरूक व्यक्ति होंगे, उतनी ही जल्दी समाज बदलने लगेगा, क्योंकि अपनी शिक्षा द्वारा उसे ये मालूम हो जाएगा कि उसे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या करना है।
1: सशा,
0: देखो नादिया, मेरी अच्छी नादिया, मेरा कहना मानो, यहां से निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। अपनी आत्मा पर छाए इस घने कोहरे को दूर करने की कोशिश करो। जतला दो सबको कि सुस्त, काहिल और निकम्मी, हर एक तरह से रेंगने वाली जिंदगी से तुम कितनी ऊब गई हो।
1: साशा, साशा तुम समझते क्यों नहीं? साशा, जो तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। जुलाई में मेरी शादी हो रही है।
0: शादी? शादी बाद में भी हो सकती है नादिया।
1: लेकिन
0: क्या तुम महसूस नहीं करती कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले जो जिंदगी जी रहे हैं वो कितनी बेकार और उद्देश्यहीन है?
1: साशा बस,
0: मैं अपनी बात खत्म कर ही रहा हूं नादिया। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी दादी, तुम्हारी मम्मी और तुम आराम से, आलसी की तरह निष्क्रिय जीवन बिता रही हो, जबकि दूसरे लोग, तुम्हारे सारे नौकर, कमर तोड़ मेहनत करते हैं। क्या ये ठीक है? बताओ, बताओ नादिया, क्या ये अच्छी बात है?
1: नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो साशा, मुझे माफ कर दो।
0: बदलने की कोशिश तो कर सकती हो नादिया।

0: नादिया, दादी और मम्मी बता रही थी कि तुम सुबह से बहुत उदास हो। क्या बात है भाई, क्या बात है?
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं आंद्रे।
0: अरे फिर भी
1: मेरा मन बहुत ही विचित्र है आंद्रे, कभी कभी कभी बिना कारण के यूं ही उदास हो जाता है बस।
0: मैं समझ गया।
1: क्या समझ गए?
0: यही कि तुम हर समय अपने ही लोगों से घिरी रहती हो, दिन रात उन्हीं की बातें सुनती हो, इस कारण तुम्हारा मन इन सब से ऊब गया है, थक गया है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तब मैं वायलिन उठा लेता हूँ और संगीत की दुनिया में खो जाता हूँ। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, बहुत जल्दी

0: मिट जाएगी।
1: कैसे?
0: अरे भाई, हमारी शादी हो जाएगी, शादी, और सारा माहौल बदल जाएगा। मैं तुम्हें एक मिनट भी अकेला नहीं रहने दूंगा। हाँ, नए घर में पहुंचते ही तुम्हारे मन में एक नया उत्साह पैदा होगा। अरे हाँ, तुमने तो अभी तक हमारा नया घर देखा ही नहीं है।
1: हाँ,
0: मैंने तुम्हारे लिए उसे विशेष रूप से कितनी नई और बढ़िया होगी ना। क्यों, तुम क्या सोचती हो नादिया इस बारे में, बताओ?
2: वहां भी तुम शाम को मेहमानों को इकट्ठा करोगे, मुझे उनका स्वागत करना होगा, उनकी बेवकूफी भरी बातें सुननी पड़ेगी, उनके बेहुदा मजाकों पर हंसना होगा।
0: क्या सोचने लगी नादिया, क्या सोचने लगी?
1: अब कुछ नहीं, घर चले अंदर, देर हो गई।
0: जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, अरे आओ ना, चलो चलो।

0: नाद्या, नाद्या,
1: नाद्या, ये क्या है? घर में मेहमान आए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, और तुम हो कि यहाँ अकेली गुमसुम बैठी हो।
2: मम्मी, मम्मी, इस शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं ये सब और ज्यादा नहीं सह सकती। तुम नहीं जानती मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे यहां से चले जाने दो।
1: कहां कहां जाओगी?
2: कहीं भी, इस बस्ती से दूर, बहुत दूर, मॉस्को, पीटर्सबर्ग, जहां मुझे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। मम्मी, मैं पढ़ूंगी, खूब पढ़ूंगी। मैं अपनी सोई हुई चेतना को जगाना चाहती हूँ। इस जाहिल और खोखली जिंदगी में मेरा दम घुटता है।
3: मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है।
2: मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मम्मी।
3: क्या?
2: मैं इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहती हूँ, जल्दी।
3: नात्या,
1: नात्या, पहले तुम बच्ची थी, अब जल्दी ही दुल्हन बनने वाली हो। कुछ बरसों में तुम माँ भी बन जाओगी, और मेरी तरह शायद तुम्हारी भी कोई जिद्दी बच्ची होगी, और शायद मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन उसे समझाना होगा।
2: ओ, मेरी अच्छी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, रो मत। मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो। जीवन में तुम्हारी एक इच्छा, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। तुम भी मेरी तकलीफ समझने की कोशिश करो। तुमने अभी अभी चौकीदार की लाठी की ठक ठक सुनी ना? ठक ठक सुनी ना? मम्मी, मुझे इस आवाज को सुन हमेशा यही लगता है जैसे ये आत्मा से कह रही है, चाको चाको चाको चाको चाको चाको। मम्मी, तुम्हें ये आवाज नहीं सुनाई पड़ती? ये तुम्हें कुछ संदेश नहीं देती? बोलो मम्मी, बोलो ना।
3: मैं क्या बोलूं नाद्या? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती।
2: उन्हें समझने की कोशिश करो मम्मी।
3: नाद्या,
2: हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो कितनी बेमतलब है। एक लिख पर हम चले जा रहे हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि हमारे इस तरह जीने का उद्देश्य क्या है।
3: नाद्या,
2: मेरी आंखें खुल गई है मम्मी। मैं प्रकाश में, रोशनी में जाना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ।
3: लेकिन तुम्हारी और आंद्रे की शादी तय हो गई है नाद्या।
2: ये शादी नहीं होगी।
3: क्या?
2: मैं मानती हूँ मम्मी, आंद्रे नेक और भला है, वो मुझे जीवन के सब सुख सुविधाएं देगा, लेकिन क्या वो मुझे मन का सुख दे सकेगा? मम्मी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो घोंघे की तरह अपने में ही बंद है। मैं उसे जल्दी ही उब जाऊंगी। मम्मी, मम्मी, मैं फिर कहती हूँ, तुम भी अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मुझे जाने दो। मम्मी, मम्मी, प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी, मम्मी, मम्मी, प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी, मुझे जाने दो।

0: कैसे हो साशा?
1: देख तो रही हो, ठीक ही हूँ। अरे तुम तो आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो।
0: हाँ साशा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ।
1: पर इस खुशी का कारण तो बताओ।
0: साशा, कल रात मैंने दादी और मम्मी को साफ साफ कह दिया है कि मैं इस अर्थहीन जिंदगी से नफरत करती हूँ। हाँ? और मैं आगे पढ़ने के लिए पीटर्सबर्ग जाना चाहती हूँ।
1: और वो मान गई?
0: उनका कहना था कि मैं इस तरह अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हूँ, और ये कि मैं अपने इस फैसले के लिए बाद में बहुत पछताऊंगी।
1: कभी नहीं पछताओगी तुम।
0: सच?
1: हाँ, तुम अपने इस फैसले के लिए कभी नहीं पछताओगी ना। तुम पीटर्सबर्ग जाकर पढ़ाई करोगी और देख लेना, तुम अपनी जिंदगी को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की जिंदगी को भी बदलने की कोशिश करोगी। जानती हो नादिया, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?
0: क्या?
1: निरंतर आगे बढ़ते जाना।
0: हाँ।
1: एक जगह रुके रहने पर पानी की तरह इंसान के दिमाग पर भी काई जम जाती है। सच मानो नादिया, मैं बहुत खुश हूं। आज तो मैं बहुत खुश हूं नादिया, बहुत।
0: मैं भी। साशा, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है।
1: जानता हूं नादिया, और ये भी जानता हूं मैं कि मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूं।
0: साशा,
1: फिर भी मैं अपने अंतिम समय तक यही कोशिश करता रहूंगा कि मैं समाज को, अपने आसपास के लोगों की विचारधारा को बदल सकूं।
0: ओ मेरे अच्छे साशा, तुम नहीं जानते तुमने एक सलाह देकर मुझ पर कितना उपकार किया है। तुम अपनी तरफ ध्यान दो, ठीक है?
1: हाँ,
0: मैं कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी।
1: नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं।
0: लेकिन
1: तुम कल सुबह बस पीटर्सबर्ग जा रही हो, ये मेरा निर्णय है।
0: हाँ,
1: तुम्हारे लोग अभी भी अपने रोने धोने से तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मॉस्को चल जाऊंगा।
0: क्या?
1: हाँ, मैं वहां अपना इलाज कराऊंगा।
0: ओ साशा,
1: वादा करो मुझसे कि तुम एक जागरूक इंसान बनकर यहाँ लौटोगी और यहाँ जागृति फैलाओगी।
0: हाँ,
1: वादा करो।
0: मैं वादा करती हूँ अच्छे साशा, मैं सच्चे मन से वादा करती हूँ।
1: कुछ वर्षों बाद जब तुम यहाँ लौटोगी तो महसूस करोगी कि ये शहर ज्यादा बूढ़ा हो गया है, यहाँ अंधेरा और बढ़ गया है, कोहरा ज्यादा घना हो गया है, और तब तुम्हें लगेगा कि इसे नए प्रकाश और नए ज्ञान की बहुत जरूरत है, और तब तुम्हें अज्ञान के इस अंधेरे को दूर करना होगा। हो सकता है कुछ बच्चे तुम्हें दुल्हन दुल्हन कहकर हंसे, तुम्हें चढ़ाएं, तुम उनकी परवाह मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने होगा एक नए विशाल और उज्जवल संसार का सपना। उठो ना दिया, जाकर अपना जरूरी सामान बांध लो। कल सुबह हमें रवाना होना है ना? और हाँ, अपना साहस मत छोड़ना, अपना निश्चय मत बदलना।
0: कभी नहीं साशा, कभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। ओ मेरे अच्छे साशा, थैंक यू साशा, ऑल द बेस्ट। कभी नहीं।

0: दुल्हन। अभी आप एंटन चेखव की रूसी कहानी का यह हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर सत्येंद्र शरत ने किया था। नाटक की निर्देशिका थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अर्चना, प्रवीण शर्मा, कुमकुम जैन, अरुण कोचर और जया रंथर।
1: अभी आप सुन रहे थे ये नाटक दुल्हन।

0: इसके लेखक थे एंटन चेखव, प्रस्तुतकर्ता थी विजयलक्ष्मी, ये आकाशवाणी रीवा है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है।

है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई, जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम महिला संसार।

मीडियम वेव फ्रिक्वेंसी पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कव्वालियों पर आधारित कार्यक्रम जश्ने समा। आगाज करते हैं नुसरत फतेह अली खान की गाई इस कव्वाली के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खैर,
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम की अगली कव्वाली सुनिए, जफर हुसैन खान बदायूनी और साथियों द्वारा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोतों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जश्न समा, और आइए ये अगली कव्वाली सुने नूरजहां और साथियों के सर में, जहां बोल लिखे हैं जफर गोरखपुरी ने और संगीत है श्याम जी घनश्याम जी का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनिए, वारसी बंधुओं के स्वर में ये कव्वाली।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रीवा केंद्र। दिन के 11 बजे हैं। आइए आप सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओ फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो हेलो
2: जी आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
1: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम।
2: जी दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मथुरा उत्तर प्रदेश।
1: मथुरा उत्तर प्रदेश। हाँ शारदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
2: जी दीदी हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है। तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड
1: पर जाता
2: है। मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
1: क्या बात है, मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
2: जी दीदी पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी जिसके कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया।
1: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई वहाँ विजिट करना चाहे तो भी आराम से आ सकता है।
2: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है। और जो देवालय है यहाँ पे शिवालय है अनेकों, लीला स्थली क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूत होगी।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अच्छा अब ये बताइए आज का प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
2: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर।
1: शोर
2: कपूर साहब की आवाज में। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, सबसे वाला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक।
1: अच्छा जीवन चलने का नाम
2: जी,
1: देखते हैं हम ये गीत हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। क्यों नहीं दिख रहा ये भाई?
2: 101% से और।
1: हाँ हाँ होगा वो तो। और सुनिए शारदा जी फैमिली में कौन कौन है आपके?
2: दीदी मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं।

0: दो बहुएं हैं, एक
1: अरे वाह,
0: है एक नकनी है,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं
1: हाँ,
0: आनंद पूर्वक, और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं रेडियो
1: अरे
0: पर
1: वाह,
0: हमेशा और
1: मतलब
0: परिवार
1: आपके
0: के
1: घर
0: लिए।
1: के सभी लोग हैं ना, गीत संगीत से
0: जी
1: जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी निसंदेह।
1: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नजरों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल
0: जी
1: 11 बजे अपना।
0: मैं
1: हाँ
0: करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चालू हुआ है तब
1: हाँ
0: से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और जब से रिकॉर्डेड हो गया है तो मैं
1: अच्छा
0: 8 दिन 10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और मेरा
1: हाँ जी,
0: फोन आराम से लग जाता है।
1: चलिए धन्यवाद शारदा जी, और बस एक विनती करेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
0: हाँ दीदी मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता हूँ,
1: चलिए
0: इससे
1: ठीक
0: पहले
1: है,
0: मैं नहीं करता हूँ। मेरा
1: बिल्कुल
0: फोन
1: बिल्कुल।
0: 28 तारीख को लगा था और 28 के बाद आज लगा रहा हूँ।
1: ओके, धन्यवाद शारदा जी।
0: बहुत बहुत हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो हेलो
1: कार।
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी।
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: हाँ, सही है।
0: बड़ा
1: सही
0: संयोग है ये तो। हाँ
1: बात है। मैंने
0: जी, बस वो कन्हैयालाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैयालाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद जी थे प्रजापति और मथुरा
1: अच्छा
0: से, और ये
1: हाँ
0: मथुरा से कन्हैयालाल जी आ गए हैं उज्जैन से। क्या बात
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ,
0: बहुत ही बढ़िया संयोग
1: मथुरा से
0: है
1: उज्जैन आ गए, गोकुल
0: वही।
1: गोकुल पढ़ने गए हैं ना, पढ़ने के लिए आ
0: बिल्कुल
1: गए
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल सही
1: आनंदपुर
0: बात
1: से।
0: है। हाँ तो चलिए कन्हैयालाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर, तो अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके
0: सही बात है, गर्मी तो है। दो
1: लाठा
0: तीन दिन से
1: वाठा खा
0: थोड़ी
1: के।
0: सी राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की
1: हाँ
0: वजह
1: भो,
0: से।
1: हाँ भोजन वोजन करके आए और हरदेव लाला आराम
0: हाँ
1: कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैयालाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: वो फिल्म जीने की राह सुना दीजिए। हाँ,
0: जीने की राह।
1: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी
0: जीने की राह तो मिल गया है।
1: दिलदानी है मेरी महबूबा। ये वाला
0: लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है। बिल्कुल ठीक है, मिल गया, आपकी पसंद का गीत भी मिल गया है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
1: आपके इधर किससे क्या गर्मी है अभी इंदौर
0: हमारे यहाँ
1: भोपाल?
0: भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी तो 2 दिन से कुछ राहत कह सकते
1: रात
0: हैं,
1: मिली। अच्छा, रात महसूस
0: है
1: हुई
0: ना।
1: है।
0: जी, चलिए धन्यवाद कन्हैयालाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है।
1: ओके ओके, धन्यवाद।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी, हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और कॉल
1: थैंक
0: कितने
1: यू
0: दिनों
1: सो
0: बाद
1: मच।
0: कर रहे हैं आप?
1: जी समझ में नहीं आया
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी, 10 दिन बाद लगाए आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारे
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और
0: हाँ
1: 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी
0: हाँ
1: आपको बताऊँ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो रहता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: हाँ
1: पर।
0: जी जी
1: और एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था, आपके मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी, उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा, मतलब
1: लोग।
0: काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए। हाँ
1: जी हाँ, वो उसमें है ना एक दिन ऐसा भी वो विशेष होता था कि
0: हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था, वो श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसे मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी।
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां से।
0: अरे
1: जी,
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए, मतलब
1: और
0: अब
1: एक बात और
0: अपना
1: है, जैसे युववाणी प्रोग्राम आता था ना, युववाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस करके,
0: हाँ हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह जी,
1: जी
0: अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी के जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना, उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पहुंचे पंडित शिवनारायण तिवारी नारायण
0: जी शिव
1: सिंह
0: नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं
1: जी।
0: आप?
1: बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे हैं।
0: अच्छा, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल। गर्मी भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
0: और घर में सब
1: और
0: कैसे हैं?
1: आप ठीक
0: हाँ,
1: हैं
0: हम बढ़िया हैं।
1: जी?
0: तो बताइए कौन से गीत सुनेंगे?
1: आज सुनाना सड़क फिल्म का
0: सड़क फिल्म का
1: जी,
0: कौन सा वाला गीत?
1: ओ जब जब प्यार में पहरा हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप ऊबते नहीं हो,
1: जी मैम,
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का जरूर सुनिएगा।
1: जी मैम,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका।
1: मैम।
0: नमस्ते। अच्छा,
1: मैम शिवानी, मेरा बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी,
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा, शिवानी
0: शिवानी मेहरा।
1: मेहरा, नीमच
0: कहाँ से? नीमच से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हो? मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो, क्योंकि
0: ये बात तो सही है। फैमिली में कौन कौन है शिवानी जी आपके? कौन
1: हाँ
0: कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर बैठी फिर खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने की फोन इन प्रोग्राम आ रहा, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप कल?
1: मैम सागर मूवी का
0: अरे
1: चेहरा
0: वाह।
1: है चांद खिलाए।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम, जी
0: तो हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे
1: जी
0: आपका, और आप कल
1: थैंक
0: के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत जरूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप।
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो, सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद, बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप जो बोलते हो ना, तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारे देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं, ऐसा रहता है। पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए। जी
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी
0: चलिए अभी तो आज के लिए
1: और
0: बताइए कि कौन
1: जैसे
0: सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेथ का
0: देखिए,
1: दिन है। जी
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं जो अपने
1: हाँ,
0: फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए। उन्हीं का गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ हाँ
1: वाला सुनवा दीजिए। नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का
1: सिंगर
0: कौन सा
1: की,
0: वाला?
1: उसका कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुए गीत है उसमें, झूम बराबर झूम शराबी, ये भी है और दूसरा भी है गीत।
0: नहीं, इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का, दो चाहने वालों की मुलाकात है, वल्ला पुतली
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया।
0: नहीं, है इसमें पुतली बाई का तो नहीं
1: जी
0: है। पुतली बाई का जो
1: जी
0: गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ,
0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा जी का नहीं है गीत,
0: नहीं
1: तो फिर ये यही सुना दो, लेडीज टेलर पिक्चर का, दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: लेडीज टेलर।
1: रफी साहब और लता जी,
0: अच्छा,
1: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत
0: हाँ
1: प्यारेलाल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत।

0: दो चाहने वालों की।
1: हाँ मुलाकात है
0: बिल्कुल
1: लोकेल
0: बिल्कुल।
1: वर्मा भी इसे की फरमाइश इसी की फरमाइश कर रहे हैं।
0: चलिए ठीक है, तो ये गीत आप बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
1: धन्यवाद।
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते।
0: दीदी नमस्ते। रणपाल
1: क्या शुभ नाम है आपका?
0: सिंह गुर्जर ग्राम बाऊपुरा तहसील ख्वाज जिला जामुई से बोल रहा हूँ। दीदी
1: आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।
0: रणपाल सिंह गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील ख्वाज जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: जालौन से गुर्जर है ना?
0: हाँ
1: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं?
0: जी सुरनपाल से गुर्जर ग्राम
1: सुरेंद्र
0: बाबूपुरा
1: पाल
0: जी
1: जी गुर्जर। ठीक है ठीक
0: अच्छा
1: है। तो सुरेंद्र पाल जी, क्या हाल है आपके?
0: है बढ़िया
1: गर्मी
0: चल
1: कैसी
0: रहा है
1: निकल रही
0: आपका।
1: है
0: हाँ
1: जालौन में? गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
1: चलो।
0: फुल्की बूंद बांद हो जाती है तो
1: हाँ,
0: अब गर्मी से राहत है इस समय।
1: चलिए। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश
1: अच्छा।
0: की धरती सोना उगले।
1: ठीक है। उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
0: हो गए 2 माह 3 के लगभग।
1: अच्छा, चलिए ठीक है। क्योंकि हमारे
0: हाँ
1: यहाँ एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
0: नहीं,
1: ठीक
0: दो
1: है,
0: तीन माह हो गए करीब करीब।
1: चलिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी। और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत। ठीक
0: एक
1: है?
0: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
1: हैं?
0: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
1: हाँ,
0: बजे से होती
1: वो
0: है?
1: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
0: अच्छा
1: बात कर रहे हैं ना, ये कल
0: हाँ

0: बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: यही जिज्ञासा थी।
0: हाँ जी, चलिए, थैंक
1: चलिए
0: यू
1: धन्यवाद।
0: वेरी मच, नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते.
0: हाँ विपिन जी नमस्ते।
1: क्या बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं और आपने उठा लिया, इसलिए ध्यान
0: नहीं,
1: ही नहीं
0: घंटी तो
1: गया.
0: यहाँ पर आई है, आपको ऐसा
1: जी
0: वहां पर फील हुआ होगा, यहाँ पर तो घंटी
1: बिल्कुल,
0: बाकायदा आई।
1: लेकिन आप तुरंत पहचान गई मुझे.
0: अब हमारे पुराने श्रोता जितने हैं और इतनी बार बात कर चुके हैं तो आवाज से पहचान ही जाते हैं।
1: हाँ, पर हमारे लिए तो है ना, आप एक लॉटरी की तरह रहती हैं, पता नहीं कौन निकलेगा.
0: तो आपने पहचान लिया कि हम कौन हैं?
1: जब आपने पहचान लिया तो हम भी पहचान ही लेते हैं.
0: कौन है हम?
1: आप हैं कविता रावत और मैं हूँ विपिन कटारे. है
0: बिल्कुल। और विपिन जी
1: ना
0: कैसे हैं?
1: जी, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ. और आज 15-16 दिन हो गए थे तो हमने कहा चलो कॉल करते हैं, आज फोन करेंगी, सोने की रिकॉर्डिंग हो रही है
0: बहुत
1: अभी.
0: अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस जगह भूल
1: जी
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात
0: सागर
1: कर रहा हूँ.
0: से? बिल्कुल ठीक है विपिन जी। और गर्मी कैसी पड़ रही है सागर में? तो गर्मी
1: गर्मी
0: तेज।
1: तो बहुत बहुत हो रही है गर्मी, लेकिन हालांकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उसमें थोड़ी
0: हाँ
1: सी कमी तो आई है, लेकिन हाँ फिर भी गर्मी हो रही है अभी भी.
0: ये तो है।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: आपके यहाँ भी गर्मी हो रही होगी.
0: हमारे यहाँ भी गर्मी है लेकिन वही सेम सीन, 2 दिन पहले बारिश
1: हाँ
0: हो गई है तो थोड़ी सी राहत हुई है।
1: हाँ पहले जो 10 दिन पहले गर्मी थी ना, उससे तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: कम है अभी.
0: वही वही। और सब कुछ परिवार में सब शुभ मंगल?
1: हाँ जी बिल्कुल, सब बढ़िया अच्छा है. और आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश का फिर सराहना सुनते हैं और आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं समय समय पे, तो अच्छा लगता है.
0: अच्छा गीत बताइए अपनी पसंद का।
1: हाँ जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और इसी का गाना सुना देना, मुझे तुम मिल गए हमदम, लता जी की आवाज में गीत है
0: अच्छा ठीक है
1: जी.
0: बिल्कुल।
1: और मैम 2-3 दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा.

0: हाँ बताइए।
1: जी हमारे दोस्त हैं, राहुल जी हैं मंडला से और जगत सिंह जी हैं पिपरिया से और वंदना उपाध्याय जी हैं जबलपुर बरेला से और लक्ष्मण रैकवार हैं, रघुवीर पंडा गोलू अरबार, और सभी के लिए और आपके लिए भी
0: थैंक यू वेरी मच विपिन जी। चलिए
1: जी।
0: अब एक
1: थैंक यू
0: हफ्ते बाद आपसे दोबारा बात होगी
1: जी, शुक्रिया,
0: जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक नीति में राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर जौदले और आरती चौंदले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी ज़िला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातन खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि बाग और पंजाबराव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरबाई ज़िला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जिद्दी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। साथ ही ये पत्र है दोबीहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस से, सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटा पार दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, रियांश ठाकुर गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपद साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं ये गीत। ये अंतिम प्रस्तुति आपकी फरमाइश की।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 5 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है
1: मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी पर। ये आकाशवाणी का युवा केंद्र है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने की
3: सुनो ना।
1: हाँ।

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मीडियम फ्रिक्वेंसी पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मर्जी है।
1: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाए तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं पंडित चंद्रधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहां तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं। मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
2: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
1: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं। लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए। बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थक कर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता भाई। ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं। तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ, अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई, मुंशी जी मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सब परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी जरा हाथ तो बटाइए।
2: अरे बच्चों बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
0: अजी तुम तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ चुना जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं। हटिए हटिए।
1: अरे ओ मेरा बिस्तर बन लिए, कहाँ जा रहा है? रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। अरे देखता नहीं महिला है।
2: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कमबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे हैं? अरे
1: पंडित जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब किसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, आज में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
5: अरे भगवान तुम बच्चों को लेकर आगे बढ़ो, चुन्नी लगा रहा हूँ।
0: अरे भैया, अरे हटिए भाई साहब, जगह दीजिए।
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो 4 ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
6: हैं? क्या उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए हैं। बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
6: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
6: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
6: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
6: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
6: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
7: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
7: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
7: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
7: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
6: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजीत ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। हाँ। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो नहीं लगी ना?
1: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या

0: मेरा सामान फेंकवाएंगे?
1: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
2: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
3: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
4: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
5: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
3: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
2: अच्छा।
4: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, ए लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है,
6: यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा।
4: अब बच्चों के पास चला जाए।
2: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
4: तुम बैठी रहो, ठीक है। पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
2: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
4: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
2: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
4: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
2: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा। हाँ बच्चों संभल कर।
1: अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
0: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
1: हाँ उतरते हैं, चलो भाई।
2: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हबड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े लत्ते पैसे जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी। अब क्या होगा। अरे भगवान।
1: अरे अरे अरे
0: अरे,
1: अरे,
0: अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
2: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
1: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
3: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
7: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं? आप लोगों को कहाँ जाना है? लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है, बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नजदीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
0: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लेटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
1: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
8: जी हाँ, कहिए, यहाँ का मैं कंपाउंडर डॉक्टर और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
0: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
8: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
0: तो क्या मुंशी जी को यही लाएं?
8: आपका जी चाहे तो ले आइए। ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है।
4: अरे ये

0: आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
1: जी हाँ, खूब पहचानता हूँ, पहचानता हूँ।
0: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
1: ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाब अमन?
1: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब अमन।
2: आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
1: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
2: 10 रुपये?
1: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज।
3: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखी लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई, मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई, पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे, खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
4: क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
5: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
4: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
5: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ दिनों

0: तो तुम ही हो कृपा शंकर। अरे भाई, तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
1: जी हाँ, 9 साल था। हाँ। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
0: अच्छा।
1: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
0: हाँ।
1: कहिए, आप तो अच्छे हैं ना? सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
0: भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
1: उनका तो देहांत हो गया, माताजी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
0: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग होंगे?
0: है तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में गुजारा हो जाएगा।
1: थोड़ी सी क्यों, मेरा पूरा मकान खाली पड़ा है।
0: अरे वाह,
1: चलिए आराम से 1, 2, 3 जितने दिन चाहे रहिए।
0: अरे वाह,
1: मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला।
0: अरे वाह वाह वाह, बेटा जी।

0: जीते रहो जीते रहो।
1: कृपा शंकर ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था, नौकरों ने चटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था। और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
2: कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा।
0: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज, शिमाइला, अशोक शर्मा, हिरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल

0: हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए दो दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिन्दी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान है।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। बहनों, इसी सुविचार के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला सभा के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा सस्नेह नमस्कार। बहनों, आज के दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की खास वजह यह है कि आज यानी 8 मई को अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। इनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1901 में शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहनों, ये दिन युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले सेवकों के प्रयासों की सराहना करना है। लोगों को जागरूक करने की दिशा में स्वास्थ्य संकटों और मानवता के प्रति रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मानवता, करुणा और सेवा के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और विश्व भर में संकटों को कम करने के लिए काम करते हैं। मानो ये एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य लोकतंत्र में धार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। ये संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से जुड़े सभी उद्यमियों की मदद करती है। रेड क्रॉस के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस डे की शुरुआत 1948 में हुई थी। आज हेनरी डुनेट की प्रेरणा से 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कमिटीज टूल्स है, जिसमें ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो बहनों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाइड फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

कहा जाता है जान है तो जहान है। मैनू सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। आप चाहे पैदल हो या साइकिल पर, दो पहिया या चार पहिया की सवारी कर रहे हो, हर हाल में सावधानी बरतना जरूरी।

0: ट्रैफिक लाइट्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, साथ ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर अंकित निर्देशों के पालन में कोताही ना बरतें और वाहन की गति हमेशा धीमी रखें। साथ ही हेलमेट का उपयोग करें। दोनों सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये एक द्विवार्षिक अभियान है जो 8 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को कम करना है। बहनों, इसका मुख्य फोकस पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसका महत्व सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उजागर करता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक स्तर पर मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सुरक्षित सड़कों की मांग करना है। बहनों, ये अभियान दुनिया भर के नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट वितरण और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ड्राइविंग को रोकना है। बहनों, सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और बहनों, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहनों, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताएं लेकर आते हैं और आज की वार्ता का विषय है रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी, और वार्ताकार है कीर्ति सक्सेना।
1: ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ब्लड प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतुओं में पाया जाता है। ब्लड की एक निश्चित मात्रा का हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। जैसा कि आप जानते ही, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड का लगभग 7% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। कभी कभी ब्लड में कुछ बाहरी पदार्थ जैसे प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों के पहुंच से प्लाज्मा विशेष प्रकार की पदार्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, तथा जो पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंटीजन RBC में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इसी प्रकार कुछ एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड कोशिकाएं, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं या ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद इनके मूलभूत लक्षण एक समान ही होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में एकत्र होने पर ये लाल रंग की हो जाती हैं। मनुष्य की एक RBC का व्यास 7.5 मिल तथा मोटाई 1.2 मिल होती है। एक RBC लगभग 100 दिन तक ही जीवित रहती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। RBC शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके साइटोप्लाज्म में लाल रंग का आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का होता है। सफेद रुधिर कणिकाएं जो कि अमीबा के समान अनियमित आकार की RBC से बड़ी लेकिन संख्या के हिसाब से कम मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती है। मनुष्य के प्रति घन मिलीलीटर ब्लड में 5000 से 9000 तक की संख्या में सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सफेद रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं एवं एग्रेनुलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं। थर्ड नंबर का है थ्रोम्बोसाइट्स जो कि 2 मिल से 4 मिल तक व्यास वाली अनियमित आकार की होती है। ये अत्यंत कोमल होती है और केवल 10 दिन तक ही जीवित रहती हैं। ये रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम के मनुष्य में औसतन 5 लीटर ब्लड होगा। मानव रुधिर लाल, गाढ़ा एवं स्वाद में नमकीन तथा पारदर्शी होता है। प्रायः रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन के संवहन की दर में कमी आ जाती है। आरबीसी के अत्यधिक विनाश या धीमे निर्माण या विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे रक्त की आवश्यकता कब पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना होने पर या किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देकर उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है जब वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति की चोट में थक्का जमने में 2 से 8 मिनट का ही समय लगता है। इसीलिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की अधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के लिए अब तक कोई भी दवा नहीं है, इसका केवल इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देना रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रक्तदान क्यों और कैसे, अर्थात रक्तदान के समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। प्रायः रक्त देने वाला व्यक्ति डोनर तथा दाता एवं प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रापक तथा रेसिपिएंट कहलाता है। रक्तदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 2 विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों के रक्त को मिलाया जाता है। तब इन ब्लड्स की आरबीसी में आपस में चिपककर गुच्छा बना लेती है। गुच्छे कभी कभी पतली रुधिर वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः रुधिर वाहिकाएं फट जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार आरबीसी के चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने वियना में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया। इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने सन 1900 में ह्यूमन ब्लड को 3 वर्गों में डिवाइड किया। इसके 2 साल बाद 1902 में लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट ने एक और ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर AB नाम दिया गया। इस प्रकार लैंडस्टीनर एंड उनके छात्रों ने अपनी मानव ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB, इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं, इसमें एंटीजन का अभाव होता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर एंड रेसिपिएंट के ब्लड की जांच की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन नहीं होता, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल ए एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल बी एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप का ब्लड केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। साथ में ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन न होने के कारण यह स्वयं ओ तथा अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने या HIV संक्रमित मां से गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने एवं HIV ग्रस्त संक्रमित माँ से उसके बच्चे को हो सकता है। यह HIV रोग लाइलाज है। अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड की जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये संक्रमित बीमारियां ब्लड डोनेट करते समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ संक्रमित सिरिंज को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ तरीके से रक्तदान किया जाना चाहिए, अर्थात ब्लड ग्रुप्स एंड संक्रमित ब्लड की जांच करके ही रोगी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं एवं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
0: रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी। अभी आपने वार्ता सुनी वार्ताकार कीर्ति सक्सेना से।

जो खून तेरी रगों में बहता है वही मेरी रगों में बहता है, दान करते रहें अपने खून का, ये दान किसी को जीवन दे सकता है। और बहनों आप प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं फिल्म आराधना से। युगल स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का और आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

अभी आपने आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वर में आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना और बहनों अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी। बहनों इन दिनों सूर्य देव के तीखे तेवर और ताप का प्रभाव चरम पर है। दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने वाली धूप और गर्म हवाएं सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहनों ऐसी स्थिति में बचाव जरूरी है। गर्मी में तेज धूप और लू से बचने के लिए सुबह 10 से 11 बजे से सूर्यास्त तक बाहर जाने से बचें। गर्मी व धूप से बचने के लिए सूती या वायल के हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बहनों धूप में निकलने से पहले अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन

या क्रीम का उपयोग करें और घर से बाहर जाते समय सिर व कानों को सूती दुपट्टा, अंगोछा या रूमाल से अच्छी तरह ढकें। मैंने उस चौड़ी किनारे वाली टोपी और यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहने।

स्नान करें और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। तला भुना ज्यादा मिर्च मसाले की बजाय हल्का और सादा भोजन करें। दोनों घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के मोटे पर्दे डालें। दोनों बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, इन्हें धूप में हरगिज ना जाने दें और समय समय पर पानी इलेक्ट्रोल व ग्लूकोज मिलाकर पिलाते रहें। दोनों जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। दोनों घर से बाहर जाते समय यदि जाना जरूरी ही है तो पानी की बोतल, भूंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें व समय समय पर इनका सेवन करते रहें। मैंने ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। और मैंने गर्मी के मौसम में मूक पशु पक्षियों के लिए भी चारे और दाने सहित पानी की व्यवस्था भी जरूर करें। इनके लिए किया गया आपका सेवा सहयोग आपको बहुत सुकून देगा। बहनों आए हैं इस धरती पर तो कुछ अच्छा कार्य करते चलें। प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कर उसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं और हर परिस्थिति में अच्छी सोच रखें और सकारात्मक रहें। बहनों अब चलने का समय हो गया है तो इतना जरूर कहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और बहनों इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान।

0: लिए कॉल करें 9425012367।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैरकर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुनानी आकाशवाणी।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

0: और लोक संगीत कार्यक्रम की अगली रचना आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में।
1: ईश्वर समान महिमा महान हम सब किसान अपने गुरुवर, ईश्वर समान महिमा महान हम

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गजलें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: और इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: पानी की हर बूंद है अनमोल,
4: बहने ना दें इसे बेमोल।
3: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
4: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
5: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुँचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक तरक्की होगी कमाल, विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: कवि श्री राग तेलंग।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की

0: कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कभी हंसाकर, कभी रुला

0: कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द का।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मराना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातृदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देशभर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 440 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं

0: छात्रों को पंजीयन दस्तावेज सत्यापन विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
6: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
5: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय

0: दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का नाम था। कैफी आजमी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने।

मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवहाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं अनिल कौचाले, नेहा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। पुणे से अगला खत भेजा है प्रियंका, पंकज और आर्या ने। जरूर वरुण से ये खत लिख भेजा है बाबा साहेब बड़ौदे और चंद्र प्रभा बड़ौदे ने। ये खत आया है गांधी बाग आकुला से रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर और हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान हदिया, अस्मा सालिया, शुएब, मुस्तफा खान, साथ में है रऊफ भाई और शाहिद भाई। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत।

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम, गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटेंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा रामनगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवा से ही एक खत लिख भेजा है। जेल रोग देवा से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैया लाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

संतोष आनंद ने इस गीत धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज कमलेश अवस्थी की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने। हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी, जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत।

साथ में आवाज है सुरेश वाडेकर की। राहुल देव वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और शब्दकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम बेमिसाल।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की नौवीं कड़ी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: एमेजॉन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सिंगा के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभाग

को द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का अनावश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली, हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी। भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए, ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाए। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत, नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण, जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं। औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में बहाने से रोकें। कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो। जल स्रोतों का संरक्षण, नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए। जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए। जन जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका। सरकार नीतियों और योजनाएं, नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज की भूमिका। प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे, तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

भी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनिए अग्निपथ फिल्म से ये गीत। अजय की आवाज है अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल और उसे संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए केदारनाथ फिल्म से ये गीत, गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं इसके बोल और अमित त्रिवेदी ने सजाया है इसे संगीत से।

अगली आवाज़ सुनिए वेद शर्मा की मलंग फिल्म से। ये गीत लिखा है कुणाल वर्मा, हर्ष लिम्बाचिया, और संगीत दिया है वेद शर्मा ने।

अगला गीत सुनिए लक्ष्मी फिल्म से शशि, डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती की आवाज है, गगन आहूजा के बोल है और संगीत है शशि और डीजे खुशी का।

अगला गीत सुनिए लव आजकल फिल्म से, शाश्वत सिंह और अरिजीत सिंह की आवाज है। इरशाद कामिल के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्त के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और आईपीएल में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, या पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार,

0: निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और

0: संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है धरती की गोद। इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो

जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शिद्दत फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसके गायक, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

अगला गीत सुनिए सत्यमेव जयते टू फिल्म से, ज़ारा एस खान और देव नेकी की आवाज़ है और तनिष्क बागची गीतकार व संगीतकार हैं।

अगली आवाज़ सुनिए रश्मीत कौर की और शामूर की रूही फिल्म से। ये गीतकार हैं इस गीत के आईपी सिंह, सचिन जिगर, और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

एंड का फिल्म से अगला गीत सुनिए मीत ब्रदर्स जैज थामी अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ में, और कुमार ने लिखे हैं इसके बोल और संगीतकार हैं मीत ब्रदर्स।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए नमस्ते इंग्लैंड फिल्म से दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आस्था गिल की आवाज है। गीतकार और संगीतकार हैं बादशाह।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब समय है सूचना का। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो भी श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 2660902 या 2660903 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 यानी 0755। सूचना समाप्त हुई।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम का आकर्षण होगा आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। शाम 8 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 और रात 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत प्रस्तुत होगा। रात 10 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ख्याल गायन का। राग होगा भीम पलासी। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 9 मई की सभा में। सबसे पहले मुख्य कार्यक्रम जो कल सुबह 11 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम में प्रेम लता नागदेव की आवाज में निमाड़ी गीतों का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम, 10 जिले की चिट्ठी, 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला प्रस्तुत होगा। अब कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुनिएगा। दोपहर 12 बजे आपकी फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की 10वीं कड़ी प्रस्तुत की जाएगी। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। और ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। शाम 5:33, 6:30 और 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे विशेष भेंट वार्ता सुनिएगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति में। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी संस्कृति भारती। और आकाशवाणी दिल्ली के ही अनुप्रसारण में कल रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसी के साथ आज की शेष सभा और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांढुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सहकार।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी का पूजा बहनी के राम राम। सुनैया भैया बहनी, इतनी शायद मारे न्योता बरात के, मतलब सांस ले का मौका नहीं मिला, तर ऊपर न्योता धरे हैं मैं। अब मन कहाँ जाए कहाँ ना जाए, पर भाई पही पूछबे तो देखी सब है कि जाए भाई, जब हम आज कहूँ के जाब तब काल हमारे को वही ऐसे न्योता पूछबे तो मनई के जाइन परत है। आओ घाम जितीदार करत है तो आगिन का करत आगिन कस करत है, और नहीं तो फिर आधीन पानी लेके चला आवत है। माने जौने रोज से जेठ लाग है तो वो लोग रोज से हमका लागत है कि ऐसा कोनो दिन नहीं आए कि दयु चार बूंदी के ठौर न लगावत हो, छीटा न मारत हो, आंधी आ रही है, पानी आ रहा है, बड्डे बड्डे पत्थरा पड़ रहे हैं, यह मेरे के हाल है दयु के। पर हाँ यह है क्योंकि थोका यह आंधी बारिश हो जाते तो नीच का गर्मी में जरूर राहत मिलती थी। आओ देखी अब एक रोज आंधी आई रही है माले, तो इतनी तेज आंधी आई के बिरवा जर से उखड़ गए रहे, छानी छपरा उड़ गए। आओ जेके घरे बराती आई रही ओहो के बहुत नुकसान हुए, माँ टेंट उंट सब उड़ गया, कुछ जगह था बड़े बड़े पत्थरों परे, ऐसा देखे सुनबे में आवा है। सुनैया भैया बहनी, जेठ माँ ऐसे आंधी पानी बड़े बर जैसन अधरियाए के आवत है कि बहुत कुछ उड़ाए बहाए के ले जाते हैं, और कबो कबो तो ऐसा हो जाता है कि जान माल के घलाए नुकसान हो जाती, जैसा आंधी पानी होएगा, तूफान होएगा, बाढ़ होएगा, भूकंप होएगा, ऐसा जब समस्या होती है तो इतनी ज़्यादा नुकसान हो जाती कि लोगन के बीच बचाव कार्य के खातिर कई एक लोग जाते, जैसन के रेड क्रॉस वाले लोग बचाव करे जाते हैं, सहायता करे जाते हैं। सुनिए भैया बहनी, रेड क्रॉस के नाम तो सब जने सुने हो, यह दुनिया के सबसे बड़ा तटस्थ और स्वतंत्र मानवीय संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी के दौरान घायल और पीड़ितन का बिना कोनो भेदभाव, जाति धर्म और राष्ट्रीयता के बगैर राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करत है, एहिन का रेड क्रॉस कहा जाता है। सुनिए भैया बहनी, एकर स्थापना हेनरी ड्यूनेट 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में कहीन रहा है, और एक मुख्यालय वहीं जिनेवा स्विट्जरलैंड में हवे। रेड क्रॉस के रूप में जाना जाए वाला यह दिवस 8 मई का हर वर्ष मनावा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी संघ जो का IFRC शॉर्टकट में कहा थे, एक विषय निर्धारित करत है जो उन युवा वर्ष के बदलत समाज के अनुरूप होते हैं, मतलब हर बरिस एकर कुछ न कुछ विषय होते हैं, कौन नो थीम होती आओ ओके अनुसार फिर ये क्षेत्र में काम किए जाते हैं। पहल रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनावा गया रहा है, यह विशेष तिथि में ऐसे मनावा जाता है कहे कि एक संस्थापक हेनरी डुनेट के जन्मतिथि आए, और असल में उनका नाम तो हम पंचे सुने हो कहे कि इन नोबेल शांति पुरस्कार पावे वाले पहल मनाई रहे, और अपने मानवतावादी प्रवृत्ति के खातिर प्रसिद्ध हम दुनिया में इनका नाम जाहिर है। रेड क्रॉस के स्थापना करत समय हेनरी डुनेट कुछ ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किहिन जोने के बारे में उनकर मानव रहा है कि यदि उन्हें अपनावा जाए तो दुनिया एक बहुत निकही जगह बन सकती है। उनका सिद्धांत रहे जैसन है मैं सार्वभौमिकता, एकता, स्वैच्छिक सेवा, स्वतंत्रता, तटस्थता, निष्पक्षता, मानवता, इतने सिद्धांत उनका रहे हैं, और इस सिद्धांतन के सकारात्मक अर्थ या बात के प्रमाण है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्य एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का बढ़ावा देव है। हालांकि IFRC पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संगठन है जो उन्हें खुद का दुनिया के सबसे बड़े मानवीय नेटवर्क के रूप में स्थापित की सके। सुनिए भैया बहनी, रेड क्रॉस जे ऐसे जुड़े चाहते हैं कि जो जुड़े हैं तो यह मैंने इनका भारतीय समाज का प्रभावित करने वाली समस्या का समझे में मदद करत है। पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया के साथ मनई का केहू के जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आवे के खातिर 24 घंटा में से मनई 2 मिनटों निकाल के मदद कर सकत है। यह दयालुता के हर काम चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो केहू के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकत है। आज के अनिश्चित दुनिया में मानवता के खातिर योगदान दे चाहिए, स्वयंसेवी सेवा में शामिल
होए से दूसरे की मदद करे चाहिए और दूसरे की मदद करे के महत्व का हम ही पंजीन का समझे चाहिए। रेड क्रॉस के जो मुख्य उद्देश्य है वह युद्ध में घायल सैनिकन के मदद, आपदा राहत, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करब है। यह मूल सिद्धांतन में अपन डट के काम करत है। सुनिए भैया बहनी, रेड क्रॉस का 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक भी 1917 में, फिर 1944 में, फिर 1963 में।

एकर प्रतीक चिन्ह है सफेद पृष्ठभूमि में एक लाल क्रॉस है, माने कि जैसे धन के चिन्ह हम पंचे बनाई थे गणित में धन के चिन्ह होते ना, वह मेरे के एकर लाल लाल धन के चिन्ह किनाई बना रहा थे। अपने भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी

का देश समाज एक दूसरे के खातिर एक दूसरे की मदद और सहायता जरूर करे चाहे। काहे कि हम पंचे समाज में रही थे, परिवार में रही थे, तो आस पड़ोस में रिश्तेदार में एक दूसरे से मने मिलजुल के रहा थे और मदद करत रहा थे। और देखी ऐसा हम कपचे का और जे जरूरतमंद लोग हैं जेका मदद के जरूरत ही उन्हों के लगे जाए के हम कपचे का बिना कोनो स्वार्थ के बिना कोनो मतलब के हम ही पचन का मदद जरूर करे चाहे। देखिए जब हम केहू के मदद सच्चे मन से करब तो हमार मदद ओसो भगवान कहाँ न कहाँ से करे लगी। ऐसे जब मने केहू के सहायता करे तो निस्वार्थ भाव से करें, मन में कोनो मेरे के कपट और स्वार्थ न रखे चाहिए। और ऐसे देखी जीवन में नहीं मदद करत एक दूसरे से सहयोग सहायता करत ऐसे जीवन बितावे और जीवन में उन्नति तरक्की ये जब सबको करी तो निश्चित है कि देश अपन आगे बढ़वे बढ़ करी।

होम्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: परत है। देखी अबे सब जने ये मड़वा गीत सुनत रहे, जोने का गावत ही संध्या पाठक। और जैसे शुरू में कहन के इतनी जून शादी ब्याह के मौसम चली रहा है, तो चौगिरदा हमको पचे का ये सब गीत संगीत रीति रिवाज के गीत लोकगीत मनई का गावे को सुने का मिले थे। और जब मनई बलगवन जात है तो चार जन गोइन के साथ बैठ के मनई गीत गावत है। और कहा थे ना कि गाए गाए बियाह होते, तो बिल्कुल गाए गाए बियाह होते, बिना गाए तो अवसर हो ही नहीं सके। और सुन लागत थे बिना गाए तब बिया गायन गाय होते है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

सुनिए भाई बहनी, आज है शुक्रवार और हम हाजिर हैं अपने एक नए व्यंजन लेके अपना चौका माँ। तो चलिए चला जाए अपने चौका के। आज हम देखिए बनावे वाले हैं पान के शरबत। जी हाँ, पान के शरबत। देखिए इतनी शायद गर्मी तो पड़ी रही है और मने न्योता बरात जात है तो खाना थो का तेलहा मसाला तो हो ही जात है, पूड़ी उड़ी हो जाती। फिर जो यही है खात खाता मने कि जीव उभी आ जाता है और फिर एक आध दिन ऐसा लागत है कि बिल्कुल खाना कहीं मने निहारे ना। पर देखिए शरीर का ऊर्जा तो कहाँ ना कहाँ से मिलवे करी और वो मिलत खाने से ही। पर जब मने खाना ना खाए तो गर्मी में देखी सबसे ज़्यादा यदि मने चाहते तो शरबत पिए ला थे, नींबुआ के शरबत पी लीस, पुदीना के शरबत बनाए पी लीस। आज हम अपना पंचिंग का पान के शरबत बन बन बताओ आओ। या गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा राहत है और फायदा करत है तो कैसन पान के शरबत बनावे के है। चलिए हम पंचे चलिए अपने चौका के तब मने बनावे के कैसन बनावे के शरबत। देखिए एका बनावे के खातिर सबसे पहले हमका पचिंग का चाही 7-8 पत्ता बढ़िया साफ सुथरा पान, एक खोरिया भर शक्कर। शक्कर मने थोड़ा बड़ी खोरिया में ले ले कहे कि शरबत मने ही बनाई। और आधा कप भर सौंफ ही हो गए, 4-5 इलायची और गुलकंद। गुलकंद तो जब हम से मने पान खरीदे जाइए पान वाले के दुकाने में गुलकंद मिल जाता है आसानी से, तो वहाँ से मने ऐसे एक पैकेट भर गुलकंद लेके आवे। आओ जितना अपना का शरबत एक गिलास बनावे के दो गिलास बनावे के वह आधार पर दो से दो गिलास बनावे के तो दो गिलास दूध, और यदि एक गिलास है बनावे के तो एक गिलास दूध। और यदि बर्फ हो तो बर्फ डाल दे, आजकल तो फ्रिज के सबके घर में ही। यदि नहीं है तो मटका तो है ही है, मटका के ठंड पानी तो कहूँ गवे नहीं भाई। आओ जो मने के घर में यह गुलाब के फूल रहा है, फूल तो हम पचे सबे को लगाए थे और गुलाब लगावे के शौकीन तो सबे होते, सबे के घर में गुलाब लगा रहा थे। तो एक जो फूल सुखा जाते तो ओके फूल सुखान फूल का वहीं पचे का न फेंके चाहिए, कहे कि शरबत उरबत मडारे के काम आवत है और ये फायदा करत है। तो इतनी चीज चाहिए। अब एक कैसन बनावे के चलिए एक चलिए हम पंचे बनावे चली। तो देखिए सबसे पहले मैंने सौंफ का धोए के और एक साफ पानी डाल के फूले दे, फूले खाती धर दे किनारे। आओ अब जो शक्कर है तो ओका शक्कर कलई के इलायची का छील के डाल के और एक हमका पचे का पीस ले के और पीस के एक धर दे। अब पान के पत्ता का निकाह के मने धो ले और ओका जो डंडी रहा थी नीचे के वो डंडी का निकाल दे काटी दे। अब पान का पत्ता कहीं छोट छोट टुकड़ा में काट के एक मिक्सी के जार में डाल के एमा जो सौंफ ही हमारा फूल गए ही ओहू का डाल दे, पानी सहित डाल दे। कहे कि जब सौंफ ही मने फूलबे तो का साफ पानी में फूलबे और पानी सहित सौंफ का डाल दे है। आओ एमा जो ये गुलकंद मने धए है मने एक आधा कप से कम है ओका डाल दे। अगर मान ली गुलकंद नहीं आए कि नहीं मिला तो ओके जगह हम पंचे खजूर डाल सकते हैं। अब एक साफ पानी डाल के यदि कम पड़े तो थोकाऊ पानी डाल के और एक निकाह से पीस के मने चटनी कैसे बना ले बढ़िया पीसे डाले। अब जब ये पिसर जाए तो एक हम पंचे बढ़िया छान के पूरा रस निकाल दी और यह जूस में चीनी मिला के निकाह के घोर ली। और देखिए एम अपना हरियर कलर हो यदि चाहे तो डाल सके थे, नहीं चाहिए तो ना डाले। अब एक निकाह के बढ़िया घोर के और एक अपना एठे बाटल माँ है भर के 12-15 दिन तक का दह सके थे। अब जब अपना का शरबत बनावे को हो तब एक अपना ले और शक्कर में थोड़ा ज़्यादा डाले के कहे कि जब मैंने दूध में एक डाला तो ज़्यादा मीठ रही तब है ना दूध में जनई। तो जब शरबत बनावे को हो तो बढ़िया ठंड दूध ले या कि हो गया जैसे मतलब सामान्य ताप के दूध है तो वह ले ली, ठंडा है तो ठंडा ले ली। और मैं बर्फ के कुछ टुकड़ा डाल के 1-2-3 चम्मच शरबत डाल दी और बढ़िया मिला दी और देखिए अपना के शरबत तैयार है। और एक ऊपर से यह गुलाब के जो फूल है ओका इसे थो टोल के डाल दी। अब ये अपना के बढ़िया स्वादिष्ट पौष्टिक बढ़िया शरबत तैयार है और बढ़िया पी ये मौसम में शरबत बहुत अच्छा लागत है। और खाना पीना तो देखी मनई के निकाह होने के चाहिए, जैसा मनई जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ऐसे मनई निकाह खाए जो मन और तन मनई के दोनों स्वस्थ रहे।

सुनिए भैया बहनी, अबे सब जने या बन्ना सुनत रहे जोने का गावते हैं प्रमिला तिवारी। ओ देखी सुनिए भैया बहनी, आज के समय में जितना सुख सुविधा बगड़ चुका है उतने समस्या परेशानी हो रही है। अब जैसे आज हर घर में एक दुई ठे गाड़ी देखे के मिलती हैं, कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल और स्कूटी तो सबे के लगे हैं। शौक के साथ साथ ये सब मने की जरूरत बन चुके हैं। मने के जीवन तकनीकी और वैज्ञानिक मशीनन के आदि हो चुका है। पर सुनिए भैया बहनी, जितना ज़्यादा गाड़ी मोटर की संख्या बढ़ी रही है उतने ज़्यादा सड़क दुर्घटना तेजी से हो रही हैं। आए दिन देखवे सुनबे में आवत है कि यहाँ वहाँ सड़क दुर्घटना हो गए और लोगन के जू चला जाता है। सुनिए भैया बहनी, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर में सड़क सुरक्षा में सुधार करे और सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतन का कम करे के खातिर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वह 2030 तक सड़क यातायात तो दुर्घटना से होने वाली मौत और चोटन का कम करे खातिर 50% तक के लक्ष्य रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में आयोजित किया जाए वाला एक प्रमुख अभियान है जो निक स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल सड़क दुर्घटना से लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती। हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत यातायात दुर्घटना में हो जाती जौन ने यही मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनावत है। सड़क दुर्घटना में 5 से 19 वर्ष के आयु

वर्ग के लोगन के मौत के मामला सबसे अधिक हमें। सुनैया भैया बहनी, फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र भारत के चार राज्यन में एक नई सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की सी, जौने के उद्देश्य दुर्घटना का कम करे के खातिर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करब है। साथ ही सड़क सुरक्षा के खातिर कुछ मुख्य उद्देश्य और नीति है, जैसे कि सुरक्षित बुनियादी ढांचा में पैदल यात्री और साइकिल चालक के खातिर सुरक्षित सड़क के निर्माण, नीतिगत सुधार के अंतर्गत तेज गति में लगाम, नशा कह के गाड़ी चलावे में रोक और सीट बेल्ट हेलमेट के उपयोग का बढ़ावा देव है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष के अंतर्गत निम्न और मध्यम आय वाले देशन में सड़क सुरक्षा परियोजना के खातिर वित्त पोषण प्रदान करब है। सुनिए भाई बहनी, या मेरे से उपाय कह के कुछ सावधानी कह के जागरूक हो के और यातायात के नियम के पालन कह के बहुत हद तक दुर्घटना जो होती है सड़क में उन्हें कम की जा सकते हैं। तमो पंचे सबको सड़क में चलत के समय यातायात के नियम के जरूर पालन करी और गाड़ी चलावत के समय हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर बांधे रही, जोने मनई के जीवन के गाड़ी में कोनो मेट के रुकावट ना आवे पावे और हंसी खुशी मनई के जीवन ऐसे चलत रहे।

सुनैया भैया बहनी, अबे सबजनैया सुहाग सुनत रहें, जोने का गावत नहीं ज्योति तिवारी। आओ देखी अब होत लागी चले के बेरा, ता जाय से पहले यह कहा कि नोता पहन अच्छे से करी, अपने जीवजामा के ख्याल राखी, स्वस्थ रही, और सबसे पहले प्राथमिकता मने अपने स्वास्थ्य के दे। जब शरीर स्वस्थ रही तभी नोता पहन हो पाई, काम हो पाई। और अब देखी हो गई चले के बेरा, तो देव विदा। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहन इनका, पूजा बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: बातचीत घोषित करता हूं।
1: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने सुरेंद्र अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी, जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, सुरेंद्र अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। क्षय जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
2: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है, और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी।

0: राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपरा साफ करना
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
1: जी,
2: पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना
1: जी,
2: ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की
1: जी,
2: जिसके वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए, पहली बात जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया
1: जी,
2: क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स घोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है
1: जी।
3: जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, April 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है
1: जी।
3: वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देखे गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो सेवन पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बैनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
0: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा ये, जो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार। और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल की जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अरुणा जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, वो पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थी ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिये, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर वेंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह की घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए, आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बैनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, ममता बैनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर

0: जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर, इसी जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोना बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और केया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शोले फिल्म से सुनिए ये गीत, राहुल देव वर्मन की आवाज है, आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल है और संगीत भी है RD वर्मन का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले की खुशबू फिल्म से। गुलजार के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब जूली फिल्म से ये अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राजेश रोशन का।

अगली आवाज सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की गब्बर इज बैक फिल्म से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

आप सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत विरासत फिल्म से कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ है, जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही

0: चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए

0: चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल

ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बायबाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वजरा और बीजेपी के जेर इकतदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनाकिद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आजादी बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया।

0: 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सीईओ उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही ये इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके की 107 अरकान कानून साज असेंबली है, अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था, हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वज़ीरे आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जबकि मनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मौशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू

0: वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव का रवैया तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क के मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू

पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिए। आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं, और वार्ताकार हैं पंकज शुक्ला।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 अब अपने बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जैसे जैसे लीग चरण के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्लेऑफ की तस्वीरें और भी अधिक दिलचस्प होती जा रही है। कई टीमें शानदार प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष कर रही है, तो वही कुछ टीमें अंतिम अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच आईपीएल का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और हर मुकाबला नई संभावनाएं लेकर सामने आ रहा है।

आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं यह वार्ता। वार्ताकार है पंकज शुक्ला।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है और आईपीएल 226 प्लेऑफ की रेस सबसे बेहद दिलचस्प हो गई है। यह टूर्नामेंट 28 मार्च 2026 को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ शुरू हुआ था। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें कुल 74 मैच खेल रही हैं जो 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले सीजन की तरह आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के अंत में टॉप फोर टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर 14 मैचों के बाद टीमें समान अंक पर रहती है तो नेट रन रेट के आधार पर पॉइंट्स टेबल में उनकी रैंकिंग तय होगी और इसके हिसाब से वे मैच खेलेंगी। इस बार टॉप फोर की लड़ाई बेहद कड़ी है क्योंकि अभी तक कोई भी टीम पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले मुकाबले हर टीम के लिए करो या मरो जैसे साबित होने वाले हैं। कुछ को हार का तुरंत नुकसान हो सकता है तो कुछ के लिए हार आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। लीग के 49 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ की तस्वीर भी एक हद तक साफ दिखती है। सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की स्थिति मजबूत है। हालांकि इन टीमों के पिछले मैचों में प्रदर्शन और दूसरी ओर तालिका में नीचे मौजूद टीमों के प्रदर्शन ने प्लेऑफ की जंग को रोमांचक बना दिया है। अभी कोई भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं है। मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों की संभावनाएं काफी कम तो है, तो चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात और दिल्ली के लिए अब बचे सभी मैच करो या मरो के हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन सी टीमें प्लेऑफ पे पहुंचने में सफल होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं 7 मई तक के हुए मुकाबलों की है। गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हराकर आईपीएल में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया। लखनऊ सुपर

इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है, अगर वह अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने गुरुवार 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल के 50वें मुकाबले में 6 रनों से हराया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 111 रनों की पारी खेली। मार्श ने 49 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लखनऊ के लिए आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने। इस मामले में उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत के 54 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की आरसीबी के खिलाफ इस जीत के बाद यह उत्सुकता है कि क्या अभी भी लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे। लखनऊ के अगले 4 में से 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हैं, वहीं एक एक मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से है। अगर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ये सभी 4 मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उन्हें 8 अंक मिलेंगे। फिलहाल उनके खाते में 6 पॉइंट हैं, इन 8 अंकों के साथ वह 14 अंकों तक पहुंच सकती है। अब अंक तालिका में टीमों की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स 10 मैचों में 13 अंक लेकर दूसरे, आरसीबी 10 मैचों में 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात जॉइंट 10 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 10 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों में 8 अंक लेकर 7वें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों में 7 अंक लेकर 8वें, मुंबई इंडियंस 10 मैचों में 6 अंक लेकर 9वें और लखनऊ सुपर जॉइंट्स 10 मैचों में 6 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। यहां यह बताना चाहूंगा कि समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में जो अंतर है वो उनके रन रेट की वजह से है। यह तालिका अभी जब हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं 7 मई तब तक की है, इसके बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब प्लेऑफ समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की करने के लिए अब अपने बाकी 3 मैचों में से सिर्फ 1 जीत की आवश्यकता है। टीम 16 अंकों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी बेहद मजबूत रही है और इसी वजह से उनका नेट रन रेट भी शानदार है, जो टाई की स्थिति में बड़ा फायदा देगा। टीम सिर्फ प्लेऑफ की नहीं बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की भी मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी मैचों में से 3 की जीतने की जरूरत है। टीम 16 से 18 अंकों तक पहुंच सकती है। उनका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत में से एक है, इसलिए 14 अंक पर भी टीम क्वालिफाई कर सकती है अगर बाकी नतीजे उनके पक्ष में गए। आरसीबी शीर्ष 2 में जगह बनाने की भी प्रबल दावेदार है। राजस्थान रॉयल्स को भी प्लेऑफ में सुरक्षित पहुंचने के लिए 2 जीत चाहिए, जिससे टीम 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। हालांकि टीम का प्रदर्शन इस सीजन में उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स को अपने नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखना होगा ताकि पीछे चल रही टीमों से वह आगे रह सके और अपनी स्थिति प्लेऑफ में मजबूत कर सके। जहां तक गुजरात टाइटंस की बात है तो गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमों में बराबर अंक पर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी 4 मैचों में कम से कम 2 बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट सुधरे और वह राजस्थान रॉयल्स या ऊपर की 4 अन्य टीमों में से किसी को पीछे छोड़कर अपनी जगह बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी 4 मैचों में से कम 3 मैच जीत दर्ज करवानी होगी। टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है यदि वह यह जीत दर्ज करेगी तो। सीएसके का नेट रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है, जो अन्य टीमों के 14 या 16 अंकों पर फंसने की स्थिति में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कोई टीम 16 या 14 अंकों में फंस जाती है, वहां अगर रन रेट से मुकाबला होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी बाकी मैचों को जीतने ही होंगे। एक भी हार उनकी उम्मीद को लगभग खत्म कर देगी। इसके अलावा टीम का खराब रन रेट भी बड़ी परेशानी का सबब है, इसलिए दिल्ली को न केवल जीत चाहिए बल्कि इस जीत का अंतर भी बड़ा चाहिए, तभी वो सुपर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी सभी 5 मैच जीतने होंगे, जिसमें से टीम अगर ये मैच जीती है तो उनका स्कोर 17 तक पहुंच सकता है। हालांकि उनका खराब नेट रन रेट चिंता का विषय है, ऐसे में 15 अंक भी शायद काफी नहीं होंगे, उन्हें अधिक अंक जुटाने के लिए ही मेहनत करनी होगी। मुंबई इंडियंस को अपने सभी बाकी मैच जीतने होंगे, साथ ही ये उम्मीद भी करनी होगी कि 12 अंकों पर मौजूद बाकी टीमें अपने अधिकतर मुकाबले हार जाएं। यानी मुंबई को अगर पहुंचना है तो उसे यह भी दुआ करनी पड़ेगी कि जो दूसरी टीम है वो हारें और मुंबई इंडियंस के बराबर
अंक के साथ वो हासिल ना कर पाए। मुंबई का खराब नेट रन रेट उनकी प्लेऑफ उम्मीदों के सामने

सबसे बड़ी बाधा बनकर हमें दिखाई देता है। ये टीमों की स्थिति है और इसमें अधिकांश हमें दिखाई देता है कि न केवल खुद का प्रदर्शन बेहतर करना होगा बल्कि जो प्रतिस्पर्धी दूसरी टीम है उनके प्रदर्शन पर भी बाकी की जो शेष चार टीमें हैं उनका प्रदर्शन, उनकी उम्मीद और उनका रास्ता निर्भर करेगा। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं 7 मई तक के हुए मुकाबलों की है। इसके बाद लगातार मैचों और उनकी हार जीत के हिसाब से यह तालिका और इसके अंकों में परिवर्तन संभव है। यदि हम ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस की बात करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस IPL में हमने देखा है कि काफी तेजी से रन बने हैं और बॉलिंग का स्तर भी, बॉलिंग रन रेट भी काफी बड़ा है, तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स मैच के बाद ऑरेंज कैप एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास आ गई है। क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली थी। क्लासेन के सीजन के 11 मैचों की 11 पारियों में 494 रन हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ही अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक के 11 मैचों की 11 पारियों में 475 रन हैं। पर्पल कैप RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दो नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं। कंबोज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। IPL 2026 में हो रही रनों की बारिश ने गेंदबाजी के आंकड़े भी बिगाड़े हैं। एक समय 4 ओवर के कोटे में 30-32 रन बनना सामान्य माना जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 45 से 50 रन तक पहुंच गई है, यानी एक ओवर में 50 रन तक बन रहे हैं। अगर कोई गेंदबाज 4 ओवर में 50 रन खर्च करते हुए एक दो विकेट निकाल ले तो उसे अच्छा स्पेल माना जाने लगा है। लेकिन इसके बाद भी IPL 2026 के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब गेंदबाज इससे ज़्यादा रन लुटा बैठे हैं। यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीजन किन गेंदबाजों की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, किन गेंदबाजों ने एक ओवर में सर्वाधिक रन खर्च किए हैं। इसकी बात करते हैं तो IPL में सबसे महंगे स्पेल की बात करें तो इसमें पंजाब किंग्स के गेंदबाज सबसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जेनवियर बार्टलेट ने 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर में 69 रन दिए। यह सीजन की अब तक की सबसे महंगा स्पेल रहा है, उन्हें एक विकेट मिला था। इसके बाद अर्शदीप सिंह का नाम आता है। बाएं हाथ के इस पेसर ने 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर में 68 रन दिए। इसके अलावा साकिब हुसैन जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं जिन्होंने 4 ओवर में 62 रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के मार्को यानसान ने 4 ओवर में 61 रन दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल्ल हिंगे ने 4 ओवर में 60 रन दिए हैं। ये ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सीजन में 60 या उससे ज़्यादा रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे अर्शदीप ने IPL 26 में अब तक सबसे ज़्यादा रन दिए हैं। यह गेंदबाज 10 मैचों में 38 ओवर फेंकते हुए 396 रन दे चुका है। यह इस सीजन में सर्वाधिक हैं। उन्हें अब तक 11 विकेट भी मिले हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक रेट 10.42 का रहा है। इसके बाद इस सीजन के सबसे ज़्यादा रन खर्च करने वाले खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा हैं। उन्होंने 38.2 ओवर में 362 रन दिए हैं। गुजरात टाइटन्स के कगिन्सो रबाडा ने 39 ओवर में 360 रन दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन ने 31.5 ओवर में 356 रन दिए हैं। वहीं पंजाब के मार्को यानसन ने 35.2 ओवर में 350 रन दिए हैं। यह IPL का एक दृश्य था जो हमने आंकड़ों के जरिए और टीमों के स्तर, उनके प्रदर्शन और उनके नेट रन रेट के स्तर पर खींचा है। हमें उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन और आक्रामक प्रदर्शन के जरिए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में सफल होंगे। आप आनंद लीजिए IPL का और क्रिकेट के उस हुनर का जो दिनों दिन निखरता जा रहा है। धन्यवाद।

0: अभी आपने आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे पंकज शुक्ला। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में आपने भेंट वार्ता सुनी आईपीएल में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं, वार्ताकार पंकज शुक्ला से। प्रस्तुतकर्ता व कार्यक्रम संयोजक थे मनीष गजभिये। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सरफरोश फिल्म से गीत सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले और साथियों की फिल्म तक्षक से। सुखविंदर सिंह और तेजपाल कौर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी रतले और अब शुरू करते हैं आपकी फरमाइशी पत्रों में लिखे हुए गीतों का सिलसिला। और सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्यासा फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है और इसकी फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन ने। और इसके अलावा लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। साथ ही राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके समस्त राजावत परिवार ने।

और अब अगली फरमाइश आप सुनेंगे जीवन धारा फिल्म से। गीत गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने, और हाँ फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, इसके साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, साथ ही जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद का।

अगली फरमाइश की है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल ने, राजदीप राजेश ने, राशि राजेश ने, श्रीमती शीतल राजेश ने। इसके साथ ही स्टार से रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: अगली आवाज आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म चरस से, और इसकी फरमाइश की है, सप्रेम नमस्ते भेजा है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया ने, और घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

और अब आप सुनेंगे नूरी फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, जिसके लिए हमें पत्र भेजा है अभिनंदन के साथ कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय ने, इसके साथ ही सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और नेपानगर से मोहन मुदालियार, आरुष आरक्षिता और राजेश ने। तो चलिए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत शामिल कर रहे हैं, पत्थर के सनम फिल्म से मुकेश की आवाज है। फरमाइशकर्ताओं के नाम है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। तो चलिए आनंद लेते हैं।

इस गीत के साथ अब लेते हैं आज के आपके फरमाइश कार्यक्रम से विदा। अगले अंक में फिर कुछ और आपकी फरमाइश पत्रों को शामिल करेंगे और सुनाएंगे आपके पसंद के गीत। आज के लिए धन्यवाद और आपके साथी नंदिनी रतले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आपने सुना ख्याल गायन पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में, राग था भीम पलासी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

एप्लीकेशन और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।

होती है। कल सुबह 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।